0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बड़ा सुंदर वर्णन है। मीराबाई को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और वो भी स्वप्न में, तो देखिए कितनी सुंदरता से वर्णन किया।

अर्थात जब मैं सोने के लिए अपने शयन कक्ष में गई तो लेटते ही मुझे नींद आ गई और स्वप्न में प्रभु आ गए।

0: जी अज का प्रोग्राम सजरी सवेर लैके मैं हाजिर हाँ तुहाडी अपनी रेडियो दोस्त प्रोग्राम की होस्ट सुखजीत ते मेरे वालों इस खूबसूरत सवेर दे विच सारे ही स्रोतियां नूं प्यार भरे नमस्कार सत श्री अकाल आदाब एंड गुड मॉर्निंग। जी अज है दिन शनिवार ते शनिवार नूं प्रोग्राम सजरी सवेर दे विच हुंदा है जी सिलसिला मॉर्निंग क्विज ते मॉर्निंग क्विज दे विच तुसीं भी शिरकत कर सकदे हो साडे स्टूडियो दा नंबर 0164-2240-331 डायल करके। ते इस प्रोग्राम च असीं पुछदे हां तुहाडे तों पहलां एक सवाल ते जे तुसीं उसदा उत्तर सानूं सही दे दिंदे हो फिर असीं तुहाडे तों पुछ लैंदे हां जी दूसरा सवाल ते जे दोवें सवालां दे उत्तर सही हो जाण ते फिर तुसीं बन जांदे हो प्रोग्राम दे विच जेतू। फिर जी देर किस गल दी, डायल करो स्टूडियो दा नंबर 0164-2240-331 ते शामिल हो जाओ अज दे मॉर्निंग क्विज दे विच। ते असीं शुरुआत करते हाँ तुहाडे दिन दी ते प्रोग्राम दी गुड मॉर्निंग दे नाल।
1: गुड मॉर्निंग जी।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: प्रोग्रामा संबंधी सूचना मिति 28 जून दिन एतवार सवेरे 11 बजे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों नाल सांझी करनगे अपने मन की बात ते उस तो तुरंत बाद मानयोग प्रधानमंत्री जी दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर पेश कीता जावेगा ते पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण ऐसे ही दिन शामी 8 बजे प्रसारित कीता जावेगा।
3: जी प्रोग्राम चल रहा है सजरी सवेर सजरी सवेर सिलसिला मॉर्निंग क्विज ते मॉर्निंग क्विज दे विच सिफर 164-242-3031 हो गया है जी डायल स्रोता टेलीफोन लाइन ते साडे नाल ने सवाल पूछ दिया उन्हां तों। हैलो हैलो
4: हैलो
3: हां जी कौन बोल रहे हो?
4: नमस्कार मैम।
3: नमस्कार जी नाम दस दो तुहाडा।
4: समीता बोल रही हां
3: जी समीता जी स्वागत है प्रोग्राम दे विच।
4: धन्यवाद जी।
3: आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्रोग्राम सुनदे हो सारे?
4: हां जी सारे सुनदे हां जी
3: सारे सुनदे हो?
4: हां जी सुबह दे लाके शाम तक सारे सुनदे हां।
3: चलो चंगी गल है जी फिर तां आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे नाल जुड़े होए हो ते आज हैगा सवाल जवाब दा सिलसिला हैना?
4: हां जी
3: फिर तां तुसी खबरां भी सुनदे होंगे?
4: हां सुनदे हां।
3: ठीक है अच्छा तुसी मैनूं ए दसो तुहाडे लई सवाल आ भारत दे विदेश मंत्री जिहड़े ने अपने उहनां दा पूरा नाम की आ?
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
3: नहीं जी विदेश मंत्री दा नाम पूछा सी जी मैं तुहाडे तो नहीं पता। चलो कोई गल नहीं मैं उत्तर हुणे दस रही हां रेडियो सैट राही तुसी रेडियो सैट ऑन करो तो तुहानू आंसर उत्थे पता लग जाएगा। शुक्रिया जी प्रोग्राम च फोन करन दे लई। श्रोतियां दस दईए कि भारत दे विदेश मंत्री जिन्हां दा नाम है जी एस जयशंकर तिन्हां दा पूरा नाम है जी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर।

जी प्रोग्राम चल रहा है सर्जरी सवेर ते सर्जरी सवेर दे विच सिलसिला मॉर्निंग क्विज ते असीं माफ़ी चाहुंदे हां साडे स्रोतियां तों क्योंकि किसी कारण करके जिहड़ी साडी अज फोन लाइन है जी ओह सही नहीं चल रही साडे कोल आवाज़ जिहड़ी है ओह सही नहीं पहुँच रही साडे स्रोतियां दी असीं कोशिश कर रहे हां जी इस नूं ठीक करन दी उन्नी देर तुसीं आनंद माणो इस गीत दा।

जी प्रोग्राम चल रहा है सजरी सवेर, ते सजरी सवेर दे विच सिलसिला मॉर्निंग क्विज़ ते एक बार फिर असी श्रोतियां नूं नंबर दस दईए जी। नंबर है 0164-292-1547। इस नंबर दे उपर तुसी सानू फोन जिहड़ा हैगा डायल कर सकदे हो ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच शिरकत कर सकदे।

जी प्रोग्राम सजरी सवेर ते सिलसिला सी जी अज मॉर्निंग क्विज दा, पर जिहड़ी टेलीफोन लाइन है वह अपना साथ कहिंदी मैं अज नहीं देना। सो सवाल भी असी पुछने अज ते जवाब भी असी देने ते अगला सवाल जिहड़ा असी तैयार किया सी जी प्रोग्राम दे विच पुछण दे लई उह सी जी पंजाबी साहित विच मुक्त छंद कविता की शुरुआत किसने कीती सी। इसका सही उत्तर है जी प्रोफेसर पूरन सिंह। तो जिहड़ा साडा अगला सवाल सी उह सी जी 2026 दे अंकड़ियां दे अनुसार पंजाब दे कुल किन्ने लोकसभा हलके ने। इसका उत्तर है जी 13 लोकसभा हलके।

0: ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ 7:59 ਤੇ 29 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ। 8:15 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। 8:30 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गयी। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है, जो साझा इतिहास

0: सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में 8 से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्साकर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और कैबो तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान

राजस्थान ने गृह मंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े

0: का जन्म, लोक सत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में दो बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-times champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home and Corporation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो सोमवार तक सेशल्स के दौरे ते होणगे। ओ सेशल्स दे राष्ट्रीय दिवस के 50 साल समारोह में शामिल होणगे। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह अज गुजरात के 14 शहरां विच भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत करनगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर तो पैदा ताप की वरतों करन वाला दुनिया का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया है। वेनेजुएला विच आए भयानक भूचाल विच मरण वाले की गिनती 920 हो गई है। भारत ने सहायता लई ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। मर्दां दे FIH प्रो लीग हाकी टूरनामेंट विच भारत ने बीती रात पाकिस्तान नूं 7-1 नाल हरा दिता है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो सोमवार तक सैशल्स के दौरे ते होणगे। ओह सैशल्स के राष्ट्रीय दिवस से गोल्डन जुबली समारोह में मुख्य मेहमान होणगे। श्री मोदी पहला 2015 सैशल्स गए सन। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समुद्री फौज के 2 जहाजों समेत भारतीय रक्षा बल की एक टुकड़ी गोल्डन जुबली समारोह में शामिल होगी। इस दौरे दौरान श्री मोदी सैशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी नाल गलबात करनगे अते दोवां देशों विचकार दुवाले संबंधां दी समीक्षा करनगे। आपसी हित के खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दों ते भी चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री सैशल्स की नैशनल असैम्बली भी संबोधन करनगे ते प्रवासी भारतीयों नाल मुलाकात करनगे। भारत सैशल्स संबंध इतिहासिक सभ्याचारक ते लोकां दरम्यान संपर्क ते आधारित ने। एक मुख समुद्री भाईवाल वजो सैशल्स खेतरी सुरक्षा ते समावेशी विकास लई भारत के महासागर दृष्टिकोण विच एक मुख भाईवाल है। यह विकासशील देशों प्रति भारत की वचनबद्धता भी दर्शाता है। यह दौरा दोहां देशों विचकार लंबे समय तो चली आ रही दोस्ती ते सारे खेतरां विच दुवले संबंधां नूं वधाउण लई उन्हां दी सांझी वचनबद्धता नूं होर मजबूत करेगा। केंद्रीय वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक ते व्यापार समझौते CETA नाल भारत ते बरतानिया दे संबंध एक महत्वपूर्ण मील पत्थर वल वध रहे ने। लंडन विच एक व्यापारिक सैशन नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि वख-वख खेतरां ते सनअती नुमाइंदे नाल गलबात करना बहुत उत्साहजनक रहा। श्री गोयल ने कहा कि हर कोई इस सांझे विश्वास तों प्रेरित है कि भविख विच दोहां देशां विचकार सहयोग ते विकास लई अथाह संभावनावां ने। उन्होंने भारती ते बरतानवी उद्योगों नूं आपसी सहयोग नूं होर मजबूत करन, नवीनता नूं तेज करन ते सांझी खुशहाली लई वधेरे निवेश करन दा सद्दा दित्ता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि CETA एक बहुत संतुलित समझौता है ते दोहां देशां लई विकास ते व्यापार लई नवें राह खोलेगा।

हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत गीत। अगले बरस सुनते हैं अगला देश भगती गीत उदित नारायण अते साथी दियां आवाजां दे विच।

0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: टहले यादों की वादियों में संग संग, दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग।
2: दिल में एक लहर सी,
0: ऐसे गाने जो चुरा ले आपका दिल। दिन में 12 बजे यादों की महफिल।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
4: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती हैं 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर

वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आर डी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस डी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एस डी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एस डी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त

पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एस डी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुने उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुने राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने ये गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर.डी. बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत

0: गाना।
1: ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून, गुलजार के लिए जो बनाई थी, वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म

आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई? लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉल बेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: hey, भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

ठीक इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए।
2: हुणे तुसी सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा, FM बैंड 101.1 MHz से, प्रसार भारती दी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR। समा हो रहा है जी 9:59 ते 29 सैकेंड। आओ हुण सुनदे हां आकाशवाणी जलंधर तो विशेष प्रसारण।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। पेश कर रहे हैं रूपक पयो कबीर कबीर। इस खास पेशकश नू आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल नाल आकाशवाणी दे बठिंडा ते पटियाला केंद्रां तों वी प्रसारित किया जा रहा है।
1: श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1367 उपर श्लोक भगत कबीर जीओ दे सिरलेख हेठ 62वें श्लोक दे रूप विच भगत कबीर जी दा फरमान है। कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो किच हरि किया पयो कबीर कबीर। सचमुच गुरबाणी दियां इन्हां पंक्तियां दे दर्शन करदे होए जदों अर्थां नूं वाचदे हां ओ प्रभु दी कृपा नूं ही सर्वोच मनदे होए आख रहे ने मेरी तां कोई हैसियत ही नहीं है, ये तां कृपा उस मालक दी ही वरत रही है, पर नाम उन्हां दा हो रहा है, भाव लोग कबीर कबीर आख रहे ने। इस विच कोई अथकथनी भी नहीं है कि अज भगत कबीर जी दी भारतीय इतिहास अंदर एक वक्री पहचान है। उन्हां दी विलक्षण ते संघर्षमई जिंदगी नूं देखते हुए अज भी हर कोई धन कबीर ही आख रहा है। उन्हां दे बहुमुल्ले विचारां दा सत्कार अज समूह धर्मां दे अंदर बिना किसी भेदभाव दे बहुत ही श्रद्धा ते प्रेम भावना नाल कीता जांदा है। भगत कबीर जी नूं भगतां विचों श्रोमणी भगत भी कहा जांदा है। उस मालक दी याद विच अपने मुखार बिंद तों जद भी उन्होंने कोई बचन उचारे तां उह रब्बी बाणी दे रूप दे विच ब्रह्म दा बोल हो निबड़े। उन्हां नूं गुरु शब्द दे रूप विच परवान करदे होए अज भी समुच्चा संसार मत्था टेकदा है, नतमस्तक हुंदा है, सत्कार भेंट करदा है।

जब उन्हां दे जीवन ते झात मारदे आ तां सर्व प्रवाणित स्रोतां ते विद्वानां दे अनुसार उन्हां दी उम्र करीब 120 साल मन्नी गई है। आप दा जन्म 1398 ईस्वी नूं होया। भगत कबीर जी दा परलोक सुधारना 1518 ईस्वी विच मन्निया गया है। इतिहास अंदर आप दे पिता जी दा नाम नीरू ते माता जी दा नाम नीमा ते धर्म सुपत्नी दा नाम माता लोई जी आउंदा है। वर्ण वंड दे आधार ते सिरजे समाज ने जाति दे रूप विच मन्निया कि आप नीवी जात विच पैदा होए ने। इस महीने नूं उन्होंने माण नाल परवान ही नहीं कीता, सगों हौका दे के आख्या, कबीर मेरी जात को सबको हसने हार, बलहारी इस जात को ए जपियो सिरजनहार। बहुत खुल के आख्या कि लोग हसदे ने कि मेरी जात छोटी है, मैं जुलाहा हां, लेकिन मैनू माण है कि मैं इस जात विच पैदा होया। पैदा ही नहीं होया, सगो मालिक ने कृपा कीती कि मैं उस मालिक दी रहमत दे नाल उसकी आराधना

सोरठ, तनासरी, तिलंग, सूही, बिलावल, गोंड, रामकली, मारू, केदारा, पैरो, बसंत, सारंग ते प्रभाती राग अंदर दर्ज है। भगत कबीर जी दे 292 शब्द ते 232 श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच दर्ज हन। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो इलावा कबीर बीजक, कबीर परिचय, साखी ग्रंथ ते कबीर ग्रंथावली विच भी कबीर जी दी रचना मिलती है। भगत कबीर जी दी बाणी विच उना दी निडरता, बेबाक समरथा ते सच कहण विच तिखेपन दा चलकारा स्पष्ट मिलता है। उना दी रचना गुरमत दे सिद्धांत दी व्याख्या है।

0: आप जी दी इनकलाबी सोच ने धरती ते पसरी बिपर दी रीत नू करारी चोट मारी, सफलतापूर्वक उस नू नकारिया। लड़ाई विचारां दी लड़दे ने ते हर हालत विच भारू भी साबित हुंदे ने। जिस मौत तो इंसान डरदा है, भगत कबीर जी उस चों परम आनंद दी प्राप्ति दसदे होए फरमान करदे ने, कबीर जिस मरने ते जग डर है मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। अज भी समुचे संसार विच संगतां गुरबाणी दे प्रवाह अंदर भगत कबीर जी दे सलोक एकाग्रचित हो के बड़े प्यार दे नाल सरवण करदियां ने। इन्हां सलोकां अंदर जिंदगी दे हर फलसफे दा बखूबी चित्रण कीता गया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे पंजाबी विभाग दे प्रोफेसर ते मुखी डॉक्टर मनजिंदर सिंह कहिंदे ने,
1: उन्हां दी दार्शनिकता बारे आपां गल करिए तां उन्हां दी फिलोसफी दे बारे बहुत महान साडे समाज शास्त्री ने डॉक्टर JPS ओबराए, उन्होंने यह कहा है कि भारत दे विच जिहड़ी आधुनिकता दा आरंभ है, जिहड़ी भारतीय आधुनिकता है, उहदा आरंभ भगत बाणी दे नाल हुंदा, ते भगत बाणी दे विच सब तो प्रमुख शख्सियतां दे विचों भगत कबीर जी दा नाम आउंदा है। आधुनिकता दा एक लक्षण यह भी हुंदा है कि जदों क्लासिकीयता दी मिथ टुटदी है ते जिहड़ा सधारण मनुख है वह केंद्र दे विच आउंदा, जदों विशिष्टता श्रेष्ठता दीआं मिथां टुटण लगदीआं। भगत बाणी विच पहली वार हुंदा कि जिहड़े साडे धार्मिक प्रवचन आ जिहड़े क्लासिकी भाषावां दे विच सीगे, जिवें संस्कृत दे विच आ जां अरेबिक च आ जां हिब्रू च आ, पहली वारी जिहड़ी आम बंदे दी भाषा आ जिवें उह पंजाबी आ जां बंगाली आ जां ब्रज भाषा आ, इह आम बंदिआं दीआं भाषावां सी। भगतां ने अध्यात्मिकता दी गल, रब दी गल, परमात्मा दी गल जिहड़ी आ उह आम बंदे दी भाषा च पहली वारी कीती। इवें करन नाल होया कि आम बंदे दा संबंध सिद्धे रूप दे विच परमात्मा दे नाल भगतां ने जोड़िया। उस तों पहला आम बंदे नूं रब तक पहुंच करन लई विच इक पुरोहित दी लोड़ हुंदी सी। पुरोहित जिहड़ा उह क्लासिकी भाषा दा जाणू हुंदा सी, उह क्लासिकी भाषा दे मंत्र पढ़ के आम बंदे नूं उहदी व्याख्या करके दसदा सी। लेकिन जदों आम बंदे दी अपनी भाषा दे विच अध्यात्मिकता आ गई, उहदी आम बंदे दी भाषा दे विच रब दी गल आ गई, तां आम बंदे दा सिद्धा नाता जिहड़ा उह रब दे नाल जुड़दा है। दूसरी गल जिहड़ी कबीर साहिब ने वड्डी कीती इतिहास दे विच, उन्होंने यह किया कि उन्होंने रब दे नां दे उत्ते जिन्ने भी आपस दे विच टकराव चल रहे सीगे, उन्हां टकरावां नूं उन्होंने खत्म किया। उहदे विच सब तो वड्डा टकराव जिहड़ा है उह सामी ते आरियाई धर्मां दा आपस दे विच सी। आरियाई ते सामी परंपरावां तों मेरा भाव यह है कि एक तां उह धर्म सन जिहड़े भारतीय परंपरावां दे विच पैदा होए, दूजे पासे उह धर्म ने जिहड़े सेमिटिक ट्रेडिशन दे विचों आए, जिहदे विचों इस्लाम आउंदा, भारतीय परंपरा दे विचों सनातन मत आउंदा, बौद्ध जैन ते भगती परंपरा दे मत आउंदे आ। इहदे विच जिहड़ा रब दे वक्खो वक्खरे संकल्प सी ते उह आपस दे विच टकराउंदे सी। कबीर साहब ने की कीता कि उहनां ने पहली वारी की कीता कि रब दे लई सामी परंपरा दे विच रब दे जिहड़े नां आ जिहदे विच अल्लाह आ, परवरदिगार आ, उह वी लै लिया, ते इधरों जिहड़े भारतीय परंपरा दे विच नाम आउंदे सीगे आरियाई परंपरा दे विच राम हरी नारायण इह वी लै ले। उन्होंने एक रब दे लई उन्हां दोवां नावां दा सांझा प्रयोग कीता ते एक तरह दे नाल उन्होंने यह दिखाया कि रब एक आ।
0: भगत कबीर जी अपनी रचना दे अंदर उस मालिक दे चरणां विच अपने आप नूं समर्पित करन दा उपदेश दिंदे ने। अपने प्यार दे प्यार विच उस दे दर ते मर मिटन दी ताकीद करदे ने, ते उन्हां दा फरमान है, कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार, मत हरि पूछे कौन है, परा हमारे बार। इस कथन नूं दोवां रूपां विच देखिया जा सकता है। भौतिक रूप दे विच वी शरीर दा त्याग अगर उस मालिक दे चरणां विच हुंदा है तां उस दे दर ते परवान चढ़दा है, लेकिन जद आपां अपनी मत नूं, अपनी हौमे नूं, अपनी मैं नूं मारदे होए अपना सब कुछ उस मालिक दे चरणां विच समर्पित कर दिंदे हां, तां फिर उस मालिक दे दर उत्ते परवान चढ़ जाईदा है। संखेप विच क्या जा सकता है कि भगत कबीर जी दा जीवन मनुखता नूं कर्मकांडी अवस्था विचों कढदे होए सच दे मार्ग नाल जुड़न लई जदोजहद करदे आ बीतिया। उन्हां

0: जी श्रोतियो, स्वागत करते हैं तुहाडे सारयां दा अज दे इस प्रोग्राम दे विच। श्रोतियो, अज तुहानू रूबरू करवाउण जा रहे हैं जी एक ऐसी शख्सियत दे नाल जिन्हां लई शब्द अगर मैं बोलां तां मैनूं लगदा तुसीं मेरे शब्दां नूं बोच जाओगे, क्योंकि उस शख्सियत नूं किसे जान पहचान दी जरूरत नहीं। टीवी दे जरिए, रेडियो, अखबारां दे जरिए ते जां फिर तुसीं किसे नैट जां होर साधन दे जरिए इन्हां नूं बहुत चंगी तरह जाणिया पहचाणिया। जी हाँ, मेरी मुराद है डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर जी तो, जिन्हां दे बहुत सारे लेख तुसी अखबारां दे विच पढ़दे हो, पंजाबी ट्रिब्यून दे विच, होर अखबारां दे विच, ते जिन्हां दीआं किताबां कई लोग ते ग्रंथां दे वांग कोल रखदे ने कि जिन्हां दे विच असीं अपने जीवन नूं सेध देनी आ जां जीवन नूं ज्ञान देना। सो ऐसे ज्ञान दे सोमे दे वल वधदिआं जी, सानूं बड़ी खुशी हो रही है अज डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर जी नूं अपने स्टूडियो, अपने वेड़े दे विच जी आया नूं आते हुए। नरेंद्र सिंह कपूर जी, तुहाडा साडे सारे श्रोतियां वल्लों ते साडे स्टूडियो परिवार वल्लों बहुत निघा स्वागत है जी।
1: धन्नवाद
0: कपूर जी। सवाल तुहाडे नाल बड़े सारे जुड़े हुए ने, क्योंकि अक्सर ये आख्या जांदा है कि अगर किसी आम बंदे नूं एक जन्म का अनुभव है जां 50 सालां दा अनुभव है, तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर नूं कई जन्मां दा अनुभव है, लगभग 1000 सालां दा अनुभव है। ये आम धारणा जिन्हां ने भी तुहानूं पढ़िया जां जिन्हां ने भी तुहानूं सुनिया, बड़ी क्यूरियोसिटी है जी, बड़ी एक तेजी है सब नूं जानन दी कि उस शख्सियत ने जिन्हां ने सानूं बड़ी चंगी तरह कोख्या होया सी उन्हां दे जीवन ते जरूर एक झात पाईए। सो तुहाडे परिवार बारे जरूर जानना चाहांगे। 1944 दे विच रावल पिंडी दे विच तुहाडा जन्म होया, जो कि बिल्कुल साहित्यक भूमि पाकिस्तान दी, साहित्य दे नाल जुड़ी हुई। रावल पिंडी दीआं गलियां, अपने मां बाप दा उत्थे पालन पोषण ते अपने बचपन दे बारे जरूर साडे नाल थोड़ा जिहा सांझा करो।
1: सब तो पहला तो मैं कहना चाहांगा कि मैं एक बड़ा साधारण व्यक्ति हाँ। जदों बहुत प्रशंसा की जाती है तो मैनू बड़ा अजीब जिहा लगता है कि मेरी गल की जा रही है जां किसी होर दी मेरे राही गल जिहड़ी है की जा रही है। मैं पंजाब दे विच पटियाला शहर दे विच बहुत अरसे तो रह रहे हैं
0: जी।
1: जन्म मेरा रावल पिंडी दे एक पिंड विच होया सी, आदि ओहदा नाम सी
0: जी जी।
1: मेरी मां जिहड़ी सी ओह देवी पिंड दी सी
0: जी,
1: जिहदे करतार सिंह दुग्गल, मोहन सिंह दीवाना
0: जी,
1: प्रोफेसर मोहन सिंह, ए ओस पासे दे सीगे
0: जी। यानी गुड़ती तुहानू पहले ही साहित्य की खेतर दी मिली हुई है।
1: मेरा ख्याल है ओह इलाका ही
0: जी
1: चंगा सी, पौन पानी अच्छा सी। जिहो जिहा साडे इधर कश्मीर वाला है, कश्मीर दे नाल ही लगदा दूजे पासे ओह। मैं ओदों 2-2.5 साल दा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रोजेक्ट हॉकाई के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट तैनात की गई हैं। एफआईएच

पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व कप विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। ग्रुप एच में काबो वेर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वेर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। लाइट कैमरा एक्शन सिर्फ एक फेज नहीं है बल्कि हार्ट बीट है बॉलीवुड की। जहां पर बनती है वो मूवीज जो करती हैं आपको एंटरटेन, आपके इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड कराती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं, मोटिवेट करती है और दिल के अंदर एक पेट्रियोटिक जज्बा जगाती है, देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा। So guys, let's dive into the vibrant world of Bollywood, जिसके लेटेस्ट अपडेट्स के साथ सर्वेंगे हैपनिंग गाने। इसलिए लॉगिन करें आप हमारे रेडियो ऐप या फिर चलें रेडियो के क्लोज, क्योंकि हम देंगे आपको बॉलीवुड डोज आकाशवाणी रेनबो पर, जहां मैं हूं प्रियंका वर्मा,

वेल दोस्तों, सिर्फ ये ट्रैक नहीं है, सिंपल एक सोलफुल हीलिंग सॉन्ग है। और जब आप किसी यू नो आप इमोशनल हो, कंफ्यूज हो, या किसी पेन से गुजर रहे हो, या आपका कोई लॉस हुआ, तो ये गाना एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बन जाता है ना। स्पेशली इस गाने की जो एक लाइन है, जो तेरा था वो जाकर तुझमें समाया, ये लाइन लॉस और एक्सेप्टेंस का एक स्पिरिचुअल फिलोसफिकल एक्सप्रेशन है। आकाशवाणी रेन पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। सुरों के सागर की लय और रवानी थे पंचमदा, सुरों के सागर की लय और रवानी थे पंचमदा। वो हर सांस को एहसास की धुन और हर गीत को मेलेडी बना देते थे। एक तरफ उनके संगीत में इंडियन क्लासिकल की गहराई और रूहानियत थी दोस्तों, तो दूसरी तरफ कंटेम्प्रेरी साउंड्स और ग्लोबल म्यूजिक का दिलकश संगम था दोस्तों। उनका हर साउंड सुरों का कैलाइडोस्कोप था, जहां हर मेलेडी एक नया एहसास और हर नोट एक कहानी थी। आदि बर्मन यानी राहुल देव बर्मन यानी हमारे पंचमदा, द मैवरिक मैस्ट्रो हु रीडिफाइंड बॉलीवुड म्यूजिक। दोस्तों आज है इनकी बर्थ एनिवर्सरी, 27 जून 1939 को कोलकाता में पहली बार गूंजी इनकी आवाज फिजाओं में। इलस्ट्रियस कंपोजर सचिन देव बर्मन और लिरिसिस्ट एंड म्यूजिशियन मीरा देव बर्मन के इकलौते बेटे राहुल देव बर्मन यानी हमारे पंचमदा के लिए संगीत सिर्फ एक विरासत या कला नहीं, बल्कि रूह की आवाज, जज्बात की जुबां और संगीत जिंदगी की धड़कन थी। बचपन से ही सुर उनकी सांसों में बसते थे और धुने उनके ख्यालों में जन्म लेती थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में आरडी बर्मन ने अपना पहला गाना ए मेरी टोपी पलट किया कंपोज कर दिया था, जिसके बाद से उनके पिता ने फिल्म फंटूश ने इनकी धुनों को यूज किया। इतना ही नहीं, आइकॉनिक ट्रैक है ना, सिर तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। इसकी जो धुन है ना, वो पंचमदा ने बचपन में ही कंपोज कर दी थी, जिसके बाद फिल्म प्यासा के साउंड ट्रैक का हिस्सा बनाया गया। उस्ताद अली अकबर खान से सरोद और समता प्रसाद जी से तबला की बारीकियां सीखने वाले पंचमदा ने क्लासिकल म्यूजिक की गहराइयों को समझा। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पंचमदा ने अपने पिता एसडी बर्मन को असिस्टेंट के रूप में उनके साथ काम किया और उनके ऑर्केस्ट्रास में अक्सर हारमोनिका की मधुर धुनें भी प्ले करते थे। फिल्म 16 साल की सुपरहिट गीत था ना, है अपना दिल तो आवारा में सुनने वाले जो माउथ ऑर्गन की दिलकश और इंचैंटिंग धुन है ना, वो भी पंचमदा ने ही बजाई थी। आरडी बर्मन की फर्स्ट रिलीज फिल्म एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर थी 1961 की छोटे नवाब। जब 1960 से मैं कहूंगी 1960 से लेकर 1990 तक पंचमदा ने भारतीय सिनेमा को सुरों की कैसी झालर से सजाया, जो आज भी उतना ही फ्रेश, वाइब्रेंट और दिलकश महसूस होता है। 300 से भी ज्यादा फिल्मों को धुनों से निखारा, जिनमें हिंदी के अलावा बंगाली, तेलुगु, तमिल, ओडिया और मराठी फिल्म भी इंक्लूडेड है। उनकी मैं कहूंगी अपनी खास आवाज से उन्होंने अपने कई गीतों को भी यादगार बनाया है। इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल आर डी बर्मन ने सिर्फ म्यूजिक कंपोज नहीं किया दोस्तों, बल्कि हिंदी सिनेमा के म्यूजिक को नए डायमेंशन दिए हैं। फिल्म खुशबू का गीत ओ मां जी रे में उन्होंने अलग अलग लेवल से बॉटल्स में फूक मार के एक अनोखा मेस्मराइजिंग फूक साउंड क्रिएट किया। वहीं सत्ते पे सत्ता के लिए उन्होंने सिंगर एनिट पिंटो से गागल करवाकर एक यूनिक बैकग्राउंड इफेक्ट रिकॉर्ड करवाया, और जो उस दौर के लिए म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट से कम नहीं था। और फिल्म चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इसकी दिलकश धुन में सुनाई देने वाली जो खनक है, वो कप्स और सॉसर की हेल्प से क्रिएट की गई है। जबकि शोले का आइकॉनिक गाना महबूबा ओ महबूबा की ओपनिंग बीट्स के लिए पंचमदा ने बॉटल्स में फूक मारी दोस्तों। उनकी कॉम्पोजिशन एक म्यूजिकल क्लाइडोस्कोप की तरह थी, जहां हर सुर एक नई सोच और एक नया एहसास लेकर आती थी। उनकी क्रिएटिविटी और म्यूजिकल ब्रिलियंस आज की जनरेशन को इंस्पायर करती है और आगे भी करती रहेगी।

दौर आते रहेंगे, दौर जाते रहेंगे, लेकिन पंचम दा की धुनें फिजाओं में गूंजती रहेंगी। चलिए अब हम उन्हीं की धुनों से निखरे एक ट्रैक को सुनते हैं जो है सागर किनारे दिल के पुकारे। दोस्तों बस मैं यही कहूंगी कि पंचम दा ने इस कॉम्पोजिशन में एक ऐसा इमर्सिव साउंडस्केप क्रिएट किया जहां मेलेडी समुद्र की लहरों की तरह बहती है और हर नोट सुकून और गहरे एहसासों से दिल को भर देता है। उनके टाइमलेस म्यूजिकल विजन का ये खूबसूरत मास्टरपीस है।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
4: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
5: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
6: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
5: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
7: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

वेलकम बैक। वेल दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रिल्स में। सुरों की सादगी आवाज में मिठास, सुरों की सादगी आवाज में मिठास, नितिन मुकेश के गीत रहते हैं दिल के पास। दोस्तों, हर गीत में है एहसास की गहराई, जहाँ ताल सरगम और जज्बात लेते हैं खूबसूरत अंगड़ाई। वेटरन सिंगर नितिन मुकेश जी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे गाइस। 27 जून 1950 को इनकी पहली बार गूंजी आवाज फिजा में। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर मुकेश जी के बेटे नितिन जी के लिए संगीत सिर्फ संगीत एक कला नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा था। घर का माहौल सुरों से महकता था। सुबह की शुरुआत या रियाज से होती, हारमोनियम की मधुर धुने घर के कोने में गूंजी और मुकेश जी की रूहानी आवाज हर पल संगीत के नए पहलुओं को स्टडी करने और उसकी गहराई को महसूस करने का एहसास कराती। शो में राज कपूर के साथ मुकेश जी की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग रही है। दोस्तों, 1970 में रिलीज हुई मेरा नाम जोकर में नितिन जी ने इंग्लिश सॉन्ग विद अ चीयर नॉट अ टियर इन योर आई की कुछ लाइंस गाकर अपने सिंगिंग वर्सटैलिटी का खूबसूरत एहसास कराया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी का नाम दोस्ती, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी की न टूटे लड़ी सो गया ये जहां, जैसी करनी वैसी बनी, पैसा बोलता है तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं, जैसे कई यादगार गीतों को अपनी सुरीली आवाज से सजाने वाले नितिन जी ने 80s और 90s के दौर में खयाम साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अवपी लहरी, राजेश रोशन, आनंद मिलन जैसे रेनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करके म्यूजिकल वर्ल्ड में अपनी एक अलग और खास जगह बनाई। नितिन जी ने अपने करियर में सिर्फ बॉलीवुड फिल्म के अलावा भजनों की दुनिया में भी अपने सुरों की मिठास बिखेरी। विशिंग नितिन मुकेश जी वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। म्यूजिकल कॉस्मोस में आपकी सोलफुल रेंडिशंस यूं ही हर दौर में म्यूजिक लवर्स के दिलों को छूती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं की आवाज से निखरे इस गाने को सुनते हैं, सो गया ये जहां। वैसे इस गाने में ना नितिन मुकेश जी की आवाज में एक अलग ही सुकून और गहराई लेकर आए ट्रैक। उनकी सोलफुल, वेलवेटी और एफर्टलेस एक्सप्रेसिव वॉइस गाने हर लफ्ज को एहसास से भर देती है और वो न सिर्फ सुरों को निभाते बल्कि उनमें तन्हाई, उदास और उम्मीद के जज्बात भी खुल जाते हैं। इनफैक्ट गाइस, इस मल्टी सिंगर कॉम्पोजिशन में आप महसूस करेंगे इस गाने को जब सुनेंगे कि नितिन मुकेश जी की आवाज अपनी वार्म्थ और सिंसेरिटी की वजह से अलग ही पहचानी जाती है। सो हियर वी गो।

दोस्तों बॉलीवुड सरताज से जुड़ा सवाल है 9868107070 पर भेजिए। आज किस म्यूजिक कंपोजर का जी उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, म्यूजिकल जीनियस है वो, उनके बारे में हमने प्रोग्राम में बात की है। जी हाँ, वो बहुत ही अच्छे और शानदार उन्होंने म्यूजिक याद का म्यूजिक उन्होंने कंपोज किया है और आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और वे जिनके बेटे हैं वो खुद भी लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर रहे हैं। 9868107070 पर। और साथ में आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों कि कल यानी 26 जून को एक ऐसी फिल्म का ग्रिपिंग टीजर रिलीज हुआ जो एक टिपिकल कमर्शियल प्रोमो नहीं बल्कि एक हार्ड हिटिंग वेकअप कॉल जैसा फील लगा। सिर्फ कुछ ही पलों में ये टीजर एंटरटेनमेंट से ज्यादा एक ऐसा सोशल इशू को सामने लेकर आता है जो हर इंसान के लिए रिलेवेंट है। टीजर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन है। हर फ्रेम एक अर्जेंसी और महसूस होती है जो ऑडियंस को सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करती है। बैकग्राउंड स्कोर में भी मतलब इसी इंटेंसिटी को वो और गहरा बना देता है और ये कहीं भी ओवर ड्रामेटिक नहीं लगता बल्कि अपने सब्जेक्ट की ग्रेविटी को क्वाइटली एम्पलीफाई करता है। श्रेयस तलपड़े का सीरियस और रिस्ट्रेंड स्क्रीन प्रेजेंस इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैप करता है। वहीं काजल अग्रवाल एक डिटरमिंड लॉयर के रूप में पावरफुल और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। विजुअल स्टार्स ग्रिटी एंड डॉक्यूमेंट्री स्टार रियलिज्म के साथ प्रेजेंट किए गए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सस्पेंस और अर्जेंसी को इन्हांस करता है जिस वजह से टीजर क्यूरियोसिटी और कंसर्न दोनों जगाती है। दोस्तों इंडियन स्टोरी फिल्म की बात हो रही है जिसे डायरेक्ट किया है चेतन डीके ने। 24 जून 2026 को थिएटर्स

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: जी वेलकम बैक, और देखते हैं हमारे साथ समय कौन है फोन लाइन पर। हेलो
4: हेलो
3: हेलो, अपना नाम बताइए दोस्त।
4: मेरा नाम हरीश गौड़ है, मेरठ से बोल रहा हूँ।
3: हरीश गौड़ जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
4: थैंक यू।
3: कैसे हैं आप?
4: मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आपकी आवाज़ सुनी तो और अच्छे हो गए।
3: चलिए बहुत बढ़िया है। और क्या करते हैं आप?
4: मैडम मैं फार्मा मार्केटिंग में हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी मार्केटिंग में हूँ।
3: ओके, तो उसमें आप मेडिसिन बेचते हैं राइट?
4: मैं बेचते नहीं, मैं प्रमोट करते हैं डॉक्टर्स को,
3: मेडिसिन प्रमोट करते हैं
4: डॉक्टर्स को।
3: और आपको पता है कि सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है?
4: सबसे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, म्यूजिक एंड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन।
3: एग्जैक्टली, लाफ्टर एंड म्यूजिक, ये बहुत आधा यू नो ये बेस्ट मेडिसिन है। और म्यूजिक जो है वो आपको म्यूजिकल राइट जो है आकाशवाणी रेनबो पर मिलती है।
4: जी बिल्कुल,
3: है ना, और सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है।
4: Exactly.
3: है ना, तो एक तीसरे दो निशाने हो जाते हैं ना हमारे।
4: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: ओके, तो आप आर डी बर्मन के बारे में कितना जानते हैं?
4: आर डी बर्मन साहब तो वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन है, मतलब और देखा जाए तो क्लासिकल और वेस्टर्न का जो एक कंपोज उन्होंने ब्लेंड किया है,
3: संगम किया,
4: संगम का सब एक से उन्होंने ही सबसे पहले किया था
3: जी।
4: अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने म्यूजिक में, जो शायद बहुत कम म्यूजिशियन ऐसे हैं जो इतना रिस्क ले पाए।
3: जी बिल्कुल, इनफैक्ट जब मुझे पता लगा कि 9 साल की उम्र में ही उन्होंने

0: जो फंटूश में यूज किया था उनके फादर ने वो धुन यूज की थी, ए मेरी टोपी पलट गया, और साथ में जो एक टाइमलेस ट्रैक है सरज तेरा चक्रा है, उसकी धुन भी पंचम दा ने बचपन में क्रिएट की थी। तो मेरे लिए मुझे भी लगा कि मतलब इतने म्यूजिकल जीनियस जो हैं आज के टाइम में थोड़ा कम देखने को मिलते हैं, है ना।
1: और उस टाइम इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता था, अब तो इंस्ट्रूमेंट इतने हो गए आप कुछ भी कर सकते।
0: हाँ अब तो खैर बात अलग हो गई, लेकिन उस समय वो कहते हैं कि बॉटल से भी फूक की आवाज निकाल लेते थे और सॉसर्स के साथ वो आवाज निकालते थे, स्पेशली जो गाना है चुरा लिया है तुमने जो दिल को, उसकी दिलकश धुन उसमें जो
1: कटोरी में पानी भर के उस पर जल तरंग निकाल देते हैं।
0: हाँ जी, और जब वो जो सिंगर जो सत्य पे सत्ता का गाना है उसमें सिंगर से उन्होंने गागल कराया था, बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब जो डेली रूटीन में जो चीजें यूज होती हैं उससे वो म्यूजिक निकाल लेते थे। तभी कहते हैं कि हर जगह संगीत है, हमारी दिल की धड़कन को महसूस करो उसमें भी संगीत है। जी बिल्कुल, तो चलिए इसी बात पे कुछ अच्छे से सुना दीजिए।
1: अभी अभी आपने एक गाना सुनाया था जाता सो गया ये, जहाँ नितिन मंगेशकर की आवाज में था, बहुत अच्छा गाना, मतलब बहुत अच्छा ट्रैक है, आपने सुनाया था, मैं उसी की दो लाइनें सुनाया था।
0: ओके,
1: सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहाँ, थैंक यू।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अभी मैं जो गाना प्ले करने वाली हूँ ना वो आरडी बर्मन जब चले गए थे, जब उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी 1942 लव स्टोरी, उसमें गाना है प्यार हुआ चुपके से, इसमें जो पंचम दान है ना,
1: बहुत अच्छा गाना,
0: हाँ उनका जो सिग्नेचर म्यूजिकल फाइनल्स का बेहतरीन एग्जाम्पल है, और इस कॉम्पोजिशन में उन्होंने मेलेडी को इतनी नजाकत और ग्रेस के साथ रोए ना हरी जी की बस क्या कहें, हर सुर प्यार के खामोश एहसास को बयां करता है। तो आप
1: और जावेद साहब के बोल इसमें अच्छे हैं, बहुत बहुत
0: जी। तो चलिए ये गाना आप सभी सुनते हैं दोस्तों, हरीश जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, यूं ही आकाशवाणी रेडियो के साथ जुड़े रहिए, टेक केयर, बाय बाय,
1: थैंक यू, बाय
0: बाय। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, स्टेशन ऑफ द नेशन आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। ध्यान से सुनिए उनके म्यूजिक को।

चुप कैसे? वेल दोस्तों, आपके मैसेजेस ले लेते हैं और ना हमें पड़ेगी डांट आपसे। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मंदिर में राम राम जी। मंदिर में गूंजती हर जय कारे की पुकार आपसे है, सूरज की लाली की चमकार आपसे है, फूलों पर आई बहार की निखार आपसे है। इस लाइन को मैं करेक्ट करूंगी रोहित जी। देश की सीमा पर तैनात हर जवान की ताकत की गूंजती झनकार देश से ही है। यूं ही हम नहीं सुनते रेनबो पूरा दिन, इस पर प्रस्तुत होने वाले हर कार्यक्रम और संगीत की बहार आपसे है। आपके बड़े भाई और प्यार बड़े भाई का प्यार और आशीर्वाद भी खुद आपसे है, अर्थात इस जीवन की हर दुख सुख की आने वाली याद और फरियाद भी आपसे है। जय हिंद। रोहित खेरा, दिल्ली 9। इसी के साथ राहुल देव वर्मा सलीम मलिक ने बिल्कुल सही जवाब दिया था यूपी से। तरुण कोहली सूरज कुंड रोड, उन्होंने भी सही बिल्कुल सही जवाब दिया था। प्रवीण जी ने गलत जवाब दिया था मध्य प्रदेश से। इसके साथ शैलेंद्र वर्मा जी ने भी सही जवाब दिया। पंकज अमरावती ने भी हमें सही जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि पिछली बार यस हमने प्रोग्राम किया था, आई नो न्यूज ऑन एयर ऐप पर प्रसारण नहीं हो पाया था ये प्रोग्राम। रवि जोशी मेरठ भी हमें बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं और इन्होंने कहा है कि जिसके रक्षक महाकाल उसका क्या बिगाड़े काल, बिल्कुल। और इसी के साथ सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से हमें बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं। एकता जी पंचकुला से हैं, मैंने काफी आपको ट्राई किया था, आपका कॉल नहीं मिला था। और दीपा ने भी गलत जवाब दिया हमें बठिंडा से। और इसी के साथ गौतम कुमार समस्तीपुर बिहार से हमें सही जवाब लिखते हैं। और इसी के साथ हमें डॉली ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, इनको भी हमने कॉल किया था लेकिन हम ये ऑनर नहीं हो पाए। और इसी के साथ देवेंद्र इंगती हमें बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं आसान से। मोहम्मद फुकान जी ने हमें कम से कम 6-7 मैसेज भेजे हैं और बिल्कुल सही जवाब दिया है मोहम्मद फुकान जी। और आपने कहा कि ये जो गाना है सो गया ये जहां आपको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तनीश कतौली भी लिखती हैं ओके। और इसी के साथ संतोष कुमार बिहार से हमें बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं। इसी के साथ बस यही कहूंगी कि आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहिए, अभी और भी मैसेज आ रहे हैं ओके। संतोष कुमार राज्य बिहार से हमें मैसेज आया है ओके। और इसी के साथ हमें उमेश कुमार ख्याला से बिल्कुल सही जवाब लिखा है। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है ओके, मैसेज तो काफी डिलीट हो गए हैं, आप मैसेज इतना करते हैं उसके बाद डिलीट भी कर देते हैं ओके। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है, आपके गीत एक से बढ़कर एक सुनवा रहे हैं ओके। जयराम खोरवाल हमें उत्तम नगर से लिखते हैं, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आऊंगी ठीक 1 बजे लेके प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 28 जून दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 27 जून दिन शनिवार शाम 5:30 बजे हफ्तावारी सिलसिला प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत साडा विशा होवेगा अरदास दर्शन रूप।

0: FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण स्टूडियो दी घड़ी ते समां 12:30 ते 40 सैकेंड होए ने ते हुण पेश है प्रोग्राम घर परिवार।
1: प्रोग्राम घर परिवार
0: अज मैं मनप्रीत प्रोग्राम घर परिवार लेके हाजिर हाँ ते अज सिलसिला होवेगा भैणा दी पसंद। अज दे प्रोग्राम विच असी उन्हां भैणां नूं शामिल करांगे जिन्हां दे फोन किसी भी प्रोग्राम विच नहीं लगदे ते करदे हां प्रोग्राम दी शुरुआत इस खूबसूरत जे गीत दे नाल।

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 28 जून, दिन एतवार, शाम 5 बजे, प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।

0: हेलो। हेलो। हाँ जी, मेरे नाल एक भैन जुड़ चुके ने ते करदे आ उन्हां नाल गलबात। हेलो।
1: हेलो। हाँ
0: हाँ जी, अपना नाम दस दियो।
1: जी, मेरा
0: हाँ जी, मोनिका जी, कित्थों बोल रहे हो तुसी?
1: नाम मोनिका सिंह है जी।
0: हाँ जी। होर की हाल चाल जी तुहाडा?
1: मैं बठिंडे पे ही बोल रही हूँ
0: की
1: जी।
0: कम कार
1: बस
0: कर
1: ठीक
0: रहे सी?
1: ठाक बढ़िया, तुसी सुनाओ। बस कुछ नहीं, कम कर रही थी, अपना काम कर रही हूँ जी। मैं, मेरा
0: जी
1: अपना काम है बच्चों को पढ़ाने का,
0: जी
1: बच्चों को कोचिंग देनी है मैं
0: बहुत अच्छा काम है जी तुहाडा। ते
1: जी।
0: हुण नाल नाल तुसी रेडियो दा आनंद माण रहे सी, है ना जी?
1: नहीं, जब मैं बच्चों को पढ़ा रही होनी उदो नहीं मैं रेडियो सुन रही, बट हाँ जो घर घर के जो मैं काम कार कर रही होनी है उदो फिर बैकग्राउंड के रेडियो चल रहे होंगे
0: अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छी गल
1: जी।
0: है। ते तुसी गीत केड़ा सुनोगे अज दे प्रोग्राम च?
1: गीत गुरदास मान का गीत लगा दो, तेरे तेरे जान दी किदा जरांगा मैं।
0: जी

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: प्रोग्राम संबंधी सूचना मिति 28 जून दिन एतवार सवेरे 11 बजे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों नाल सांझे करनगे अपने मन की बात ते उस तो तुरंत बाद मानयोग प्रधानमंत्री जी दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर पेश कीता जावेगा ते पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण ऐसे ही दिन शामी 8 बजे प्रसारित कीता जावेगा।

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना। मिति 28 जून दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 27 जून दिन शनिवार शाम 5:30 बजे हफ्तावारी सिलसिला प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत साडा विशा होवेगा अरदास दर्शन रूप अभ्यास।

चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे

0: दार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है, ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी, मुझे आनंद

0: एनसीईएल, अमूल, इस सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला किया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका

0: देशीय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CUCI थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।

जी श्रोतियो, तुसी बने हुए हो साडे नाल प्रोग्राम सुरीली दुपहर दे विच। ते हुण गीत सुनदे आ कली जोटा फिल्म दे विचों, जिस नूं आवाज दित्ती है सतिंदर सरताज ने। ते इस गीत दी फरमाइश साडे कोल पहुंच चुकी है जी। पिंड झंझेड़ी तहसील खरड़ जिला SAS नगर तों लियाकत अली, निशा शाहीन, यासमीन, अरमान मलिक ते ए सारा परिवार। पिंड वड़िंग खेड़ा तो भोला सिंह सिद्धू, भूरा सिंह गहलोत राजा वड़िंग, पिंड वजीदपुर भोमा तो बलजीत सिंह, जग्गा सिंह रामा मंडी, बलजीत कौर रामा मंडी ते ए अपने पोतरे तनवीर ते गुरवीर जसनूर इन्हां दे नाम भेजदे ने जी। अगे सानू फरमाइश भेजी इसे गीत की फरमाइश मुहम्मद वकार फरीदी, मुहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी ते हिना कौसर। इसे गीत की फरमाइश सानू भेजी है राजेश जैन, मुल्लापुर दाखा मंडी, राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम जैन, न्यूजीलैंड तो अभिषेक जैन, आशीष खुराना, हर्ष तीर, मनजिंदर संधु, जशनप्रीत संधु, बेबी संधु। ते अगे सानू फरमाइश भेजी है जी इसे गीत नू जो सुनना चाहते ने साडे स्रोते ओ ने जी शहबाज जैन, परवेश जैन, बिट्टा जैन, टीटा जैन ते नगीना। आओ इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुनदे हां जी सतिंदर सरताज दी आवाज दे विच ए गीत।

जी प्रोग्राम चल रहा सुरीली दोपहर ते इस प्रोग्राम दे विच तुसी 77, 173, 73, 146 नंबर ते अपनियां प्यारियां फरमाइशां भेज के अपने प्यारे प्यारे गीत सुन सकदे हो। हुण असीं सुनदे हां गीत मुहम्मद रफी अते शमशाद बेगम दीआं आवाज़ां दे विच ते फरमाइश भेजण वाले साडे स्रोते ने जी जगदीश राय गर्ग, अंजना राणी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग, विकास गोयल, नीतू गोयल, ए सानू लिखते ने जी नेड़े बस अड्डा वन वे ट्रैफिक रोड मानसा तो इसे गीत की फरमाइश लैके आए ने गुरलाल गुरलाल जी ते नाल अगली फरमाइश है जी रबाब सिंह माही नंगल, जरनैल सिंह मान, देव महंत माही नंगल, बाबू टेलर, जसवीर माही, इन्हां सारे स्रोतियां नूं भी यही गीत पसंद है जी। अगे है जो साडे स्रोते विनोद काठपाल, प्रवीण काठपाल, हनी काठपाल, दीक्षा काठपाल, जन्नत काठपाल, यह है जी पिंड मूल्यावाली जिला फाजिलका तो जी। बहुत अच्छा, अगली फरमाइश है मोहल्ला आनंद विहार तो

जी श्रोतियो, तुसी सुन रहे हो अपने फरमाइशी गीत, ते हुण तुसी सुनोगे मुहम्मद सदीक ते रणजीत कौर दियां आवाज़ां दे विच अगला गीत। ते फरमाइश करन वाले ने जी पिंड खाने की ढाब मलोड़ तो शमशेर सिंह कौलतर, जसविंदर कौर करनप्रीत सिंह, करन प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर सिंह मनताज। ते इसे गीत नू सुनना चाहुंदे ने प्रगट सिंह ढिल्लों, जशनप्रीत सिंह ढिल्लों, रणवीर सिंह ढिल्लों, मनराज सिंह ढिल्लों, गुरफतेह सिंह धालीवाल, गुरनूर कौर धालीवाल, पिंड ढिल्लवां, जिला बरनाला, तहसील तपा मंडी। इसे गीत नूं ही साडे अगले सुनना चाहुंदे ने जी श्रोता निरंजन बलवीर सानी, प्रजोत दीपू। इसे गीत की फरमाइश लैके आए ने पिंड लालावाई, जिला श्री मुक्तसर साहिब तों नछत्तर सिंह, मनजीत कौर, अशमन कौर, जगमीत कौर, राजवीर कौर, सुमन कौर ते सुखचैन सिंह। आओ इन्हां सारे स्रोतियां दी फरमाइश ते सुनदे हां जी मुहम्मद सदीक ते रणजीत कौर दियां आवाज़ां दे विच एह गीत।

0: सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहेगी,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

अनचाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए हैं, इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियां भेजनी है, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है। और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो पसंद है आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिए, राधिका गजभिए, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिए, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है, नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्र प्रभा वाड़ोदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

0: नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
1: तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं, अलग अलग जगहों से एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत, जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज, ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता, प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकीब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो,
0: अब छिपाव दोराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहां गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूं, ये सही है। हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा

0: के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
1: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना क्रिकेटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
0: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
1: हाँ हाँ आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
0: भारती भारती, तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
1: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब, विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का जो लेडी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
0: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
1: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शांत से कीजिए।
0: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
1: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है, होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
0: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
1: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
0: रियली?
1: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
0: भारती,
1: सिर्फ भारती नहीं, आई एम डॉक्टर भारती। डॉक्टर अदनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है, मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या?
1: अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
1: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
2: तो तुम इन्हें जानती हो?
1: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ, मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
2: अब क्या बताऊं भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है, उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
1: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
2: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
1: अब मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, नहीं वो काम संभालने जा रही हूँ।
2: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो, गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
1: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
2: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
1: आई एम सो सॉरी उमा।
2: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
1: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
2: शुक्रिया,
1: मुझे आज्ञा दो।
2: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: उस हवाई जहाज को क्यों उतार के ले गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जचता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरास्तार रईस कुमार स्वामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो ये मत भूलना।
1: हाँ हाँ आप चिंता ना करें मामा जी।
2: डॉक्टर साहब, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमजोर हो गया हूँ, जरा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी, टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
2: डॉक्टर जी पैसा नहीं है। डॉक्टर जी
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
3: डॉक्टर साहब उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस जादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गए नागमणि, इतनी देर कैसे हुई, इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
3: एक ही करके पूछी ना।
1: कहो तो।
3: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है फिर
3: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों वो यहाँ नहीं आ सकते?
3: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
3: आप नई आई हैं इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं चलूं?
1: हाँ जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह

0: और शाम को खाना भोजन के बाद।
1: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
0: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए। मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
2: ओफो,
0: आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं हैं। मैं अनुभवी औरत कह रही हूं, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
3: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
0: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
3: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहां नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
0: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
3: नागमणि,
0: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
4: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है। नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
5: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
4: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
5: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
4: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
3: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
5: भारती, तुम?
4: अच्छा, तो ये बात है।
5: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
3: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
5: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
3: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
4: सुना आपने?
5: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
4: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
5: भारती, भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
3: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
5: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
3: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है, आप चिंता छोड़िए मामा जी।
5: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे सीना दर्द कर रहा है।
3: क्या हुआ मामा जी?
5: सीनो,
3: मामा जी क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
5: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
3: ले जाइए, ये लीजिए पानी। भगवान, दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है।
5: अम्मा,
3: मामा जी, मामा जी, मामा जी, एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो,
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो।
0: ये लो उतर आए तुम्हारी धरा पर।
1: अरे ए उमा भैया कहा कैसा
0: हंसे भाई, पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
1: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ।
0: क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी,

0: अपने ये छोटा सा बक्स सीधा कंघी किया हुआ सिर, वाह ठेठ देहाती दाई माँ
1: ठीक ही तो है।
0: लगती
1: लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाई माँ का ही तो दूसरा रूप है।
0: हो। तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
1: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई?
0: जानम्मा
1: जी
0: ऐसा करो, तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
1: जी बहुत अच्छा।
0: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा, मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
0: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
1: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
0: अच्छा,
1: भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
0: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है? तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो।
1: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं। और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
0: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है तो?
1: ऐसे मनहूस देहात मत कहो उमा, ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ। इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
0: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
1: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
0: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
1: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो और?
0: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
1: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
0: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
1: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
0: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
1: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
0: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं, मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है। वो
1: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है,
0: क्या?
1: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
0: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
1: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना।
0: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
1: हाँ, जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
0: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूं।
1: अरे कॉन्ग्रेचुलेशन उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
0: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना है।
1: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
0: श्योर जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली
1: अरे
0: गई
1: अब क्या
0: थी।
1: बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
0: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद उसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गया?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब, आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब हैं, आपको हर बात में मजाक सोचता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की का हो रही है।

0: अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
0: अरे अरे ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला क्या बात है बताओ?
2: डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
0: अरे अरे ये तो बेहोश हो गई। हाय इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
1: अब पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चल चल
1: गंगा, वो बस ले आ जल्दी से।
4: बेटी इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
4: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
4: बेटी कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वो दूसरी है कि वो देर में खुलती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
4: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गांव से लौट रही थी, बीच रास्ते में 3-4 गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
4: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी आपने दवा खाई थी, कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
4: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
4: भारती तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
1: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
4: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूँ, मैंने उसका इलाज किया है।
4: ये न भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
1: काश मैं मर्द होती। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखती हूँ कौन है।
4: रात के 10 बज चुके हैं।
1: अरे नागमणि तुम क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?
5: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
5: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगे तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
4: जानम्मा अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
5: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आई डॉक्टर अम्मा
1: जल्दी चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्का कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए, डॉक्टर ने धमकाती है, जानती है हम कौन है।
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम है, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: फिर से पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे

0: नाले में बहा दी जाएगी।
1: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है, अरे बचाओ, अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं मेरे के तेरे। कायर कहेंगे छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए, अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
2: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
6: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
5: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sound, camera, action!
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ

0: कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ
1: गीत
0: गीत
1: सुनिए। जी,
0: सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
1: ये 1973 में,
0: ये
1: 1973 में आप
0: 1973 में,
1: हरियाणा से मुंबई आ गए।
0: नहीं मैं हरियाणा से दिल्ली में था,
1: हाँ
0: दिल्ली से मुंबई आया।
1: अच्छा।
0: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी,
1: जी।
0: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी,
1: अच्छा।
0: उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था,
1: अच्छा, तीन दोस्त आए थे
0: तीन
1: आप।
0: दोस्त आए थे,
1: हाँ
0: मेरे दोस्त का वो दोस्त था,
1: अच्छा।
0: तो उसने बोला कि मैं जहां रहता हूं वो बहुत बड़ी जगह है और उस जगह पे ये नहीं जा सकता
1: कौन आप?
0: सुधाकर, कि
1: अच्छा,
0: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहां कुछ कुछ हो गया।
1: अरे
0: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। मैंने कहा
1: अच्छा।
0: भाई आप तो जाइए फिर मैं रुकता हूं। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बंबई में मेरी पहली
1: ओपनिंग
0: रात
1: हुई आपकी।
0: ओपनिंग हुई, दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूं अभी,
1: उस पल को महसूस करते हो जब
0: बिल्कुल
1: आपको
0: याद
1: ऐसा
0: आता
1: किसी ने कहा
0: है,
1: था।
0: याद आता है वो।
1: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए
0: नहीं
1: थे?
0: मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का,
1: अच्छा।
0: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में और रात को वहां खाना खिला के छोड़ देते थे, पूरा
1: अच्छा।
0: खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया, और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहां उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुंचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरेस पे मुझे सोने की जगह देते थे,
1: कोई पैसा नहीं
0: नहीं
1: देते
0: पैसा नहीं देते थे।
1: थे।
0: फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहां काफी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला,
1: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते
0: यही
1: रहे,
0: काम
1: ये
0: करता रहा।
1: संघर्ष जो
0: अब इसको
1: करता।
0: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहां के लिए आया था,
1: हाँ
0: अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहां पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे, तो वहां पे एक मुस्लिम होटल था जहां बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी, तो
1: अच्छा,
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं
1: पैसा
0: था,
1: मिल जाता था
0: इतना
1: आपको।
0: पैसा मिल जाता था। तो वहां उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया, और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए,
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहां जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो, तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहां से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए।

0: फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूँ,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूब
1: महबूब आया
0: आया
1: है।
0: है।

0: इस बीच माता पिता से बात होती रही क्या? उन्होंने पूछा, और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे, और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने उनको एक अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई, अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बंबई में ही हो सकता है, तो ठीक है, आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहां शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं
0: आप
1: नहीं
0: शंकर
1: नहीं
0: जी के सानिध्य में रहे, कैसे
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा। झाड़ू, कटका, पोछा, जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा। तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहां पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी, और सोने की कोई
0: दिक्कत
1: परेशानी
0: नहीं
1: नहीं
0: थी।
1: थी। तो मैं जो है वहां पे काफी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई, यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके

0: सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊं, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
1: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ कविताएं
0: लगभग
1: रच
0: दो
1: ली
0: ढाई
1: थी?
0: सौ गीत मैंने लिखे थे,
1: अच्छा।
0: गीत तो रोज लिखता था। लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए क्या,
1: बिल्कुल।
0: वो भी समझ गए। और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
1: अच्छा।
0: और कहा कि हसरत मियाँ ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ, ये उनके वर्ड थे।
1: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
0: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बंबई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें खुश हो
1: उसमें भी
0: जाए।
1: ऊर्जा आ जाती थी,
0: हाँ लगता
1: मोटिवेशन
0: था,
1: मिलता था
0: मोटिवेशन
1: कि
0: होता
1: कभी
0: था
1: हमारा भी ऐसा
0: कि
1: घर
0: कभी हमारा भी होगा।
1: होगा।
0: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा। वहां का एक अलग ही चलन था, वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
1: अच्छा,
0: अब वो पैसे क्यों
1: कौन
0: नहीं,
1: देता
0: कौन
1: था?
0: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
1: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
0: हो
1: साहब के
0: सकता है,
1: प्रति ना, इस
0: हो सकता
1: दीवानगी
0: है,
1: में भी लोग कितना काम कर जाते
0: करते
1: हैं।
0: हैं। तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे क्योंकि
1: जी
0: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
1: जी
0: को।
1: जी जी
0: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे।
1: जी
0: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रही उनसे, बातचीत में वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए।
1: जी
0: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूं जितना अच्छा हजरत साहब लिखते थे।
1: जी खैर, ये तो
0: कहीं ना
1: आप
0: कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
1: जो हसरत साहब जैसा होगा।
0: उनके जैसा, हो सकता है
1: जी
0: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
1: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
0: जी
1: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना हसरत
0: जी जी
1: साहब
0: जी
1: को।
0: जी बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
0: जी
1: है ना सुधाकर जी? तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूं कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का।
1: जी
0: क्या है प्यार

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंदराज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त टू व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपए मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहां पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा। और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
1: जी।
0: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही है कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी, तो ये सफर कैसा रहा? किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
1: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
0: अच्छा।
1: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
0: अच्छा।
1: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफी मतलब मुलाकातें रही। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ। मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में और मेरी तब तक शादी भी

0: गई थी। तो हम लोग मियां बीबी रहते ही थे वहां पे। तो वहां मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे। तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की। और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ। तो मैंने उनको सुना दिया। तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा। तो उन्होंने कहा, बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा, जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया। और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला। और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले।
1: अरे
0: मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
1: अच्छा
0: जी। और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है। तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो तो
1: शानदार और लेजेंड से थे
0: उनका
1: वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी।
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाकिनी जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी।
1: पसंद का ये गीत।

0: ओ ये पवन चले सनम सनम, तू है मेरी लगन, करो सौ सौ जतन, ये जोड़ी है नंबर वन।
1: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
2: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
1: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा।

0: किशोर कुमार के साथ आपका,
1: लंबा। जी जी जी
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किससे से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहां सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना
0: करते
1: चाहिए
0: हैं,
1: वो सब मैंने
0: वो तो
1: वहीं से
0: हरफन
1: सीखा
0: वाला थे किशोर
1: बहुत
0: कुमार।
1: बहुत। और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूं, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
0: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
1: वो फिल्म थी गोरी,
0: गोरी।
1: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था, विजय
0: अच्छा,
1: विजय त्यागी।
0: विजय त्यागी।
1: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूं, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया, और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया, और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं, क्योंकि फासला काफी हो चुका था। तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूं, तो बोले अच्छा जो कल तक हमारे यहां नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
0: अरे
1: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूं, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो, अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 है शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही है। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो हमने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था, उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा,
0: अरे क्या बात
1: और
0: है।
1: उसी में उन्होंने की।
0: ये होते हैं महान
1: जी जी
0: संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को,
1: जी
0: और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही
1: नहीं
0: था?
1: मेरे गाने थे उसमें, मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
0: अच्छा।
1: हाँ मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था, और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में दुल्हन का सच्चा प्यार।
0: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: देखिए आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
0: अच्छा, कौन सा
1: मेरा
0: गीत?
1: वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
0: क्या बात है।
1: की।
0: ये गीत तो हर एक के दिलो
1: जी
0: दिमाग में है,
1: जी
0: और
1: जी
0: अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए
1: इस
0: जाते
1: गीत
0: हैं।
1: ने मेरी जिंदगी बना दी। मतलब
0: अच्छा।
1: ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ,
0: हाँ।
1: और उसके बाद जो है ना लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे विपिन भाई रेशमिया,
0: अच्छा।
1: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊं, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली और लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊं, तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
0: अच्छा।
1: हाँ उनके लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था,
0: जी
1: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है, मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
0: डरना
1: का
0: क्या।
1: टाइटल।

0: टल सॉन्ग था,
1: जी जी
0: और हिमेश जी ने गाना मुझे
1: आपको
0: दिया।
1: दिया। हाँ
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो
0: पहली
1: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी।
0: फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या, कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली
1: ठीक है।
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
1: हाँ
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
1: हाँ
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की,
1: नाम की।
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके
1: क्योंकि तुम वो
0: हटके। तो
1: हटके।
0: ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
1: हाँ
0: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
1: अच्छा
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बन गई।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत सुंदर
0: है। इसमें और पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है।
1: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकेंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाली, बहुत बारीक काम किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी जी।
0: तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये ओडली पैंतरा था।
0: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये, जिसे हर एक को समझना आसान नहीं था।
1: जी जी।
0: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत
1: जी जी।
0: में गवाया, तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी कहानी होती है।
1: हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं, वो जो हैं बस वही हैं
0: जी,
1: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं। उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए। बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा। कौन है म्यूजिक डायरेक्टर? तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है। हाँ अच्छा अच्छा वो करता है वो, करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की।
0: अच्छा,
1: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था। मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो, और मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
0: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
1: हो गया।
0: जी।
1: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ, तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या

0: मैं थोड़ी बिजी हूं, ये वो। मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी, और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है, तो अभी मिला है। तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं चुप हो गया। बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या गया, वहां से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई है। अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: इनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है।
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा, और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे। तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा
0: यार क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही है इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं गा
0: सकती।
1: पाएंगे।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है, और कोई बात नहीं, आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी, लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहंशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा, यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? मैंने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती
1: हैं।
0: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, और वो बात मैं कह नहीं पाया, लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया, शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूं, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो लाइन
0: दादा
1: के लिए भी आए।
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी।
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती है ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन
1: बहुत सुंदर थी। और काजोल की आंखें जब
0: है।
1: एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती हैं उस गाने
0: जी
1: में, और सलमान गाते हैं उनके
0: गाते
1: लिए,
0: हैं,
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छी
1: लगता
0: लाइन।
1: है, बहुत सुंदर।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ
1: नहीं
0: करना,
1: है।
0: है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं, अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा। और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था, तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पर हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब जाके
1: जरूरी।
0: शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का
1: कॉन्वेंट
0: है।
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही जब दूसरा गाना हमको मिला, तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता, तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके यारा दिल भी मारे झटके, तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
0: हाँ।
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है तो वो खटकेगा जरूर,
0: जी
1: भले बाद में उसको पता
0: जी
1: लगे कि ये मेरी
0: सच्चाई
1: बहन की
0: यही है।
1: सच्चाई है,
0: हाँ,
1: लेकिन पहला उसका जो
0: रिएक्शन आएगा।
1: रिएक्शन आएगा तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना पटके और भैया को तू खटके।
0: हाँ, अच्छा।
1: और ये
0: जी
1: गाना कंप्लीट
0: जी
1: हुआ,
0: जी जी
1: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
0: जी
1: हुए।
0: जी

0: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक
1: जी
0: दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि
1: जी
0: किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ आए,
1: हाँ,
0: वो क्यों
1: वो
0: आए
1: क्यों आए
0: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा?
1: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े ना लाएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
0: अच्छा
1: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूं जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था। उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूं कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूं,
0: जी, ये सबसे बड़ी
1: अपनी
0: बात है।
1: बात को रखते हुए।
0: जी
1: मैं ऐसा
0: जी
1: नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूं वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे हैं तो दादी भी नाचेगी और
0: अच्छा
1: दादी गाएगी भी।
0: अच्छा हाँ
1: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा,
0: हाँ
1: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे। और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा।
0: सही बात
1: मुझे
0: है।
1: एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूं कि
0: बिल्कुल
1: मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे।
0: जी।
1: तो मैंने कहा ठीक है, दादी गाएगी लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया
0: क्या बात है।
1: और उनको बुलाया। गाना वाना लिखा नहीं था तब तक,
0: अच्छा
1: पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा उसमें। अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है, ये सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती हैं, और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं।
0: जी।
1: उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में, और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा, बोले नहीं दादा नहीं दादी।
0: जी।
1: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
0: जी
1: यहां तक तो दादी गाती है, अब
0: हाँ
1: लड़का क्या जवाब दे,
0: हाँ
1: दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
0: क्या बात
1: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब
0: जी।
1: आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा, तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए।

0: करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ।
1: जी,
0: गीत
1: मैं
0: सुनाइए
1: आपसे यही कहने वाली थी। चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी
1: पसंद का ये गीत, फिल्म हमराज से।
0: हमराज।

0: ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤੋ ਲਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤੋ ਲਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
1: आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: किसी के पास में थोड़ा सा लो लेवल वाटर है, 6 इंच का भी पानी हो, आजला हम उसमें कल्चर कर सकते हैं
1: जी।
0: इसका बहुत बढ़िया एक हम कुदरती देन है कि जो नॉर्मल हमारा जो यूरिया बनता है फर्टिलाइजर प्लांट में, हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, वो हावर्स एंड बस प्रोसेस में बनता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट में 1000 डिग्री एटमोस्फेयर टेम्परेचर और 300 डिग्री 1000 डिग्री एटमोस्फेयर प्रेशर और 300 डिग्री टेम्परेचर से प्रेशर में बनता है। कितना एनर्जी इंटेंसिव है
1: जी।
0: लेकिन ये जो हमारा कुदरती देन है, इसको चाहिए बस 30 डिग्री टेम्परेचर जो हमारा पास है, और प्रेशर बहुत ही कम, 0.001। इसके नीचे एक छोटा सा जीव रहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हरित नील हरित शैवाल बोलते हैं, उसका नाम है अनाबिना एजुली। वो क्या है ना, ऑटोमेटिक सिम्बायोटिक प्रोसेस में इसको बनाता है। यूरिया जो हम बाजार से खरीद के डायरेक्ट डालते हैं, ये जैविक खाद क्या करता है, धीरे धीरे

0: डिग्री एटमोस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री टेम्परेचर से प्रेशर में बनता है, कितना एनर्जी इंटेंसिव है
1: जी।
0: लेकिन ये जो हमारा कुदरती देन है इसको चाहिए बस 30 डिग्री टेम्परेचर जो हमारा पास है और प्रेशर बहुत ही कम 0.001। इसके नीचे एक छोटा सा जीव रहता है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हरित नील हरित शैवाल बोलते हैं, उसका नाम है अनाबिना एजोली। वो क्या है ना ऑटोमेटिक सिम्बायोटिक प्रोसेस में उसको बनाता है। यूरिया जो हम बाजार से खरीद के डायरेक्ट डालते हैं ये जैविक खाद क्या करता है धीरे धीरे यूरिया उसी में छोड़ता है। तो इसको हम अगर धीरे धीरे अप्लाई करने चले तो हमारा सेहत जो सॉयल खेत का या तालाब का जो सॉयल है उसका भी हम पीएच मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से हो सकता है। और मेन चीज है जैसे डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि हम अगर ज्यादा से ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं जहां के पोटास का जरूरत नहीं फिर भी हम पोटास डाल रहे हैं ऐसे करके उनका हम संतुलन बिगाड़ रहे हैं। संतुलन बिगाड़ रहे हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो कोई भी खेत उपजाऊ कब होता है उसका कार्बन और नाइट्रोजन का प्रॉपर रेशियो होता है। जैसे हमारे तालाब में हम देंगे मछली कहाँ अच्छा बढ़ता है, कुछ कुछ मछली फार्मर आके कंप्लेन करते हैं सर मेरा फार्म में मछली बढ़ नहीं रहा है, ऐसे ज्यादा फर्टिलाइजर डाल के हम इसको अनुपयोग बना लिया है। उसको अगर हम देखें तो कार्बन नाइट्रोजन जितना प्रोपोर्शनेटली डालें संतुलित हिसाब से डालें, आजकल तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का भी पॉलिसी चल रहा है, तो CN रेशियो 10 के नीचे जो रहा वो प्रोडक्टिव बना
1: जी।
0: जो खेत में जो तालाब में, मैं तालाब की बात कर रहा हूं अभी मछली के बारे में, जो तालाब में कार्बन नाइट्रोजन के रेशियो 8-9 से ऊपर चल गया मतलब कोई हम रासायनिक पदार्थ हो उसको ज्यादा डालने की कोशिश किया नहीं तो खेत से सरफेस में लो पा के आया तो उसमें मछली बढ़ेगा नहीं, वो मतलब अनुपयोग हुआ। इसलिए उसको बनाने के लिए जो खेत के साथ जो हमारा मछली तालाब का जो मिट्टी है उसको भी बचा के रखना भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसी के तौर में मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा जैसे ये जो अजोलाबी जो है इसको इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर भी हम ले सकते हैं। अगर एक छोटे किसान के पास थोड़ा सा जमीन है तो थोड़ा सा जमीन के साथ वो गेहूं भी करे, साथ में गेहूं जो थोड़ा थोड़ा पानी जो बचा है गेहूं में उसमें वो अजोला कल्टीवेट करे, उसको न्यूट्रिएंट मिला और उसके कीटनाशक डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये उसको कवर अप करके रहता है। अजोला एक मैट के तरफ से इसका जो द्विगुणित प्रणाली है मतलब डबलिंग टाइम है 2-3 दिन के अंदर डबल हो जाता है, इतना फास्ट बढ़ता है नेचुरली। तो क्या होता है ना एक कब ठंडी हवा भी देता है जो जड़ को गेहूं का जड़ को भी एक अच्छे ठंडी का मौसम देता है। तीसरी चीज है हम कुछ ग्रास कार्पे की मछली है जिसको हम छोड़े तो ये वाला जो है अजोला को खाके भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही हम ऐसे बोलेंगे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कैसे करें, इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर हम उसको बोलते हैं, गेहूं के साथ उसका जो पेडिस्ट्रो हुआ उसका यूटिलाइज करें, गाय का गोबर भैंस का गोबर उसको भी डाल के हम मछली पैदा करें, मुर्गी का जो है मुर्गी का जो मैला है वो सबसे बढ़िया है
1: जी,
0: उसको हम डाल के अजोला को मिला के मछली का प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मछली प्रोडक्शन कर सकते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है, सॉयल का जो कंडीशन भी अच्छा रहा सुस्त रहा और मछली का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हुआ। तो एक छोटे किसान के पास जिसे थोड़ा सा जमीन हो वो थोड़े से जमीन में एक गाय होगा उसके घर में या एक भैंस होगा 20 मुर्गी होंगे उसको लेके भी मतलब वो 3-4 टन का मछली निकाल सकता है, मछली भी खाएगा बेचेगा भी और साथ ही साथ उसका सॉयल का कंडीशन भी अच्छा रहा।
2: किसान प्रभु किन्ना वधिया बहु परती खेती का तरीका डॉक्टर विश्वजीत जी ने दस्या है कि इसे दे नाल ही साडा असी जिहड़ा पशु पालन करते हैं उसे दी रहिंद खूंद मछलियां दे काम आ जानी है, उत्थे ही अजोला दा उत्पादन हो जाना है, नाल ही उह सुधरे हुए पानी नूं भी फसल दे विच वरत्या जाना है ते नाल ही जिहड़ी अजोला खाद है ये जिथे मछलियां दी खुराक दा काम करती है ते उत्थे नाल ही ये खेत दी सेहत नूं सुधारन लई भी बहुत ज्यादा योगदान दिंदी है। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਹ ਪਾੜਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁਲਾਂਗ ਪੁੱਟਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਹੀ ਨਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग गुरदीप कौर गिल ते विकास भारद्वाज।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार।

0: तन मन को ताजा कर जाए।
1: प्रोग्राम गल्लां चुगल दे तहत तुसीं सुणिया विशेष प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे तहत एक विशेष सिलसिला अरदास दर्शन रूप अभ्यास। इस दे वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन गुरदीप कौर किलदा।
2: MSc Maths, MSc IT, MBA, MCA, MSc Fashion Designing, अधि 4 साला BA BEd ITEP विच दाखला शुरू है। आधुनिक सहूलता।
1: इस दे नाल ही आज दा प्रोग्राम गल्ला चो गल खत्म हुंदा है।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना कल सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सचरी सवेर दौरान तुसी सुनोगे साडा हफ्तावारी सिलसिला पैगाम। प्रोग्राम पैगाम पेश करनगे सतपाल बराड़ ते विजय लक्ष्मी। सुनना ना भुलना प्रोग्राम सचरी सवेर तो है ता हफ्तावारी सिलसिला पैगाम मिति 28 जून 2026 सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सचरी सवेर दौरान।
3: गीत तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम मेरियां गल्लां मेरे गीत विच। जेकर लता मंगेशकर जी की गल करिए तां असी सब जानते हाँ कि किवें उन्हां दी एक छोटी जिही शुरुआत तो बाद वो अज तक लोकां दे दिलां विच राज करदे हन। श्रोतियो हर किसी की जिंदगी इक्को जिही नहीं हुंदी, बहुत मेहनत करन तो बाद कुछ लोकां नूं मंजिल मिलदी है ते किसे नूं सब कुछ बहुत ही आसानी नाल मिल जांदा है। अते नाल ही सानूं ए ध्यान रखना चाहिदा है कि सानूं हमेशा हत्थ दियां लकीरां नालों ज़्यादा हत्थी कीती मेहनत अते कोशिश उपर यकीन रखना चाहिदा है। जेकर मैं अपनी निजी जिंदगी दी गल करां तां मेरे दादा जी सरदार बलदेव सिंह उन्हां दियां गल्लां ने मेरे जीवन नूं बहुत प्रभावित किया है। वह एक पढ़े लिखे ते सूझवान व्यक्ति सन। मैनू उन्हां बारे गल्लां करनियां बहुत पसंद हन। उन्हां ने हमेशा नवीं नवीं गल्लां दस के अते उन्हां द्वारा पढ़ियां होईयां कहानियां कवितावां सुना के मेरी दिलचस्पी नूं साहित वल बहुत वधाया है। कई बार एवें हुंदा सी कि उन्हां द्वारा सिखाउण करके मैनू पहलां तों ही अपने स्कूल दे विच पाठक्रम दे विच जो जो कवितावां कहानियां हुंदियां सन उन्हां दे लेखकां ते उस दे पिछोकड़ बारे पहलां तों ही पता हुंदा सी। जिवें कि उन्हां दी सब तों पसंदीदा कविता है अमृता प्रीतम जी दी लिखी हुई अज आखां वारी शान। मैनूं स्कूली दिनां दे विच भी इस चीज़ दा बहुत फायदा होया। उन्हां नूं संगीत सुनन दा भी बहुत ज़्यादा शौक सी। सुरिंदर कौर ते नरिंदर बीबा जी दे गीत वह अक्सर सुनिया ते सानू सुनाया करदे सन। तां आओ सुनदे हाँ उन्हां दी ही पसंद दा एक गीत जिसनू गाया है सुरिंदर कौर जी ने।

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 28 जून दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 MHz ते तुसी सुन रहे हो नौजवान श्रोतियां दा प्रोग्राम।

0: Pasuani. खबरां दिमाल में सरबजीत कौर पहलांस बुलेटिन दिया खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन दिन दौरे ते अज सेशल्स पहुंचे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि एमएसएमई खेतर देश की आर्थिकता नु मजबूत करन विच अहम भूमिका निभांदा है। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि सहकारी टैक्सी प्लेटफार्म भारत टैक्सी नु अगले दो साल विच देश भर के 500 शहरां ते कस्बियां विच फैलाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सकत्र चंपत राय ते ट्रस्टी अलिन मिश्रा के इस्तीफे ने अधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप विच भारत ने कजाकिस्तान नु 2-0 नाल हरा के क्वार्टर फाइनल विच अपनी थां पक्की कर ली है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के तीन दिन दौरे ते विक्टोरिया पहुंचे ने। हवाई अड्डे से उन्हों का सेशल्स से राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमिनी ने निघा स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस वास्ते राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमिनी का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर विच भारत का एक अहम समुद्री भाईवाल ते करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोवां देशों के लोगों के हित लई भारत ते सेशल्स विचकार लंबे समय तो चल रहे संबंधा ते सहयोग नूं होर मजबूत करन लई एक उसारू दौरे लई अपनी तांग प्रगट की थी। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे ते भारतीय प्रवासियों का निघा स्वागत करने लई भी धन्यवाद किया। उन्होंने विदेशों विच भारत के वख-वख खेतरां दे सभ्याचार नूं सुरक्षित रखण ते प्यार करन दे तरीके की प्रशंसा की थी। प्रधानमंत्री सेशल्स दे 50वें आजादी दिवस समारोह विच मुख मेहमान होणगे। ओ सेशल्स दे राष्ट्रीय दिवस समारोह विच शामिल होण वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होणगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम एमएसएमई खेतर किसी भी देश की आर्थिकता नूं मजबूत करन विच अहम भूमिका निभांदे ने। आज नवी दिल्ली विच एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत समागम विच बोलदिया उन्होंने कहा कि भारत विच इह खेतर पहली पीढ़ी के उद्यमियों की हिम्मत अते उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खेतर देश दी कुल बरामदा का करीब 50% योगदान पाता है ते उच्च गुणवत्ता दे म्यारां नूं कायम रखता है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई खेतर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनन दे भारत दे टीचे विच सब तो मजबूत थंब बन गया है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि मौजूदा विश्व व्यापारक दृश्य विच घट लागत वाले उत्पाद जरूरी ने। उन्होंने कहा कि कारोबारां नूं गुणवत्ता नाल समझौता किए बिना हमेशा घट लागत वाले उत्पादों के उत्पादन से ध्यान केंद्रित करना चाहिए है। उन्हां उद्यमियों नूं उत्पादकता उत्पादन ते गुणवत्ता वधाउण लई आधुनिक तकनालोजी अपनाउण दी अपील कीती। इस साल दे संयुक्त राष्ट्र थीम एआई संचालित भविख विच मनुख केंद्रित उद्यमशीलता दा हवाला दिंदे होए उन्हां कहा कि तकनीकी तब्दीली नूं खतरे दी बजाय इक मौके वजो देखिया जाणा चाहीदा है। इस मौके उपराष्ट्रपति ने देश विच एमएसएमईज नूं मजबूत बनाउण दे उद्देश नाल क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफार्म पोर्टल ते प्रकाशन भी लांच कीते। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफार्म भारत टैक्सी नूं अगले दो सालां विच देश भर के 500 शहरां ते कस्बियां विच फैलाया जाएगा। गुजरात विच भारत टैक्सी की शुरुआत करते हुए श्री शाह ने इस पहलकदमी नूं सहकारी खेतर विच एक इनकलाबी कदम दस्या। उन्हां कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश ड्राइवरां नूं सिद्धे तौर ते लाभ पहुंचा के एक निरपक्ष अते पारदर्शी प्रणाली नूं यकीनी बनाउणा है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह ने डेयरी उत्पादन से संबंधित अमूल सहकारी मुहिम की सफलता का भी जिक्र किया।
1: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला किया।
0: ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल @AIRRN।

सोनाली बेंद्रे सिर्फ एक सफल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि साहस, आत्मविश्वास ते पॉजिटिविटी दी एक मिसाल है। सोनाली ने फिल्मां ते अपने जीवन दी संघर्ष दी कहानी नाल आम लोकां नूं प्रभावित कीता। बॉक्स ऑफिस दे उत्ते बहुत सारियां फ्लॉप होईयां फिल्मां दे बावजूद

जूद। सोनाली बेंद्रे एक रोमांटिक एक्शन फिल्म दिल जले जो कि 1996 दे विच बॉक्स ऑफिस ते रिलीज हुंदी है ते एही फिल्म सोनाली बेंद्रे दे करियर दी सफल फिल्म साबित हुंदी है। सोनाली बेंद्रे ने बेहद सफल परिवारिक ड्रामे भी कीते। 1999 दे विच सोनाली बेंद्रे दी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं रिलीज हुंदी है। अपने दशक दे विच सोनाली बेंद्रे ने रोमांटिक ड्रामा हमारा दिल आपके पास है दे अभिनय दे विच बेस्ट को एक्ट्रेस दे रूप विच भी स्क्रीन ते काम कीता ते उना दे इस काम वास्ते उना नू पुरस्कार भी मिलिया। इस तो इलावा सोनाली बेंद्रे ने कन्नड़ मनोविज्ञानिक थ्रिलर प्रेलसे ते तेलुगु रोमांटिक फिल्म ड्रामा मुरारी दे विच भी दक्षिणी भारत दियां फिल्मां दे विच कदम रखिया जिस दे लई भी उना नू बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु फिल्म फेयर अवार्ड दे नाल सन्मानित कीता गया। इस तो इलावा सोनाली ने एक्शन ड्रामा इंद्रा 2002 दे विच एक रोमांटिक कॉमेडी मन मुदड़ू 2002 दे विच कॉमेडी ड्रामा शंकर दादा MBBS दे विच भी काम कीता ते इह सारियां ही फिल्मां बॉक्स ऑफिस दे उत्ते हिट रहियां। मराठी फिल्म अनहत जो कि 2003 दे विच रिलीज हुंदी है तो बाद सोनाली बेंद्रे ने अपने फिल्मी सफर नूं कुछ देर आराम दिता।

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 28 जून दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।
1: प्रोग्रामा संबंधी सूचना, मिति 28 जून दिन एतवार सवेरे 11 बजे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियां नाल सांझी करनगे अपने मन की बात, ते उस तुरंत बाद मानयोग प्रधानमंत्री जी दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर पेश कीता जावेगा, ते पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण ऐसे ही दिन शामी 8 बजे प्रसारित कीता जावेगा।
2: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना, मिति 28 जून दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सचरी सवेर दौरान तुसी सुनोगे साडा हफ्तावारी सिलसिला पैगाम। प्रोग्राम पेश करनगे विजय लक्ष्मी ते सतपाल बराड़। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। तुसी प्रोग्राम पैगाम दे विच पैगाम भेज सकते हो 77173 73146 ते। सो सुनना ना भुलना, मिति 28 जून दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सचरी

0: ਵੀਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੈਗਾਮ
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: इस दे नाल ही आज दा प्रोग्राम शाम सुहानी एथे ही खत्म हुंदा है। निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा।

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 28 जून दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।
1: प्रोग्रामा संबंधी सूचना मिति 28 जून दिन एतवार सवेरे 11 बजे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियां नाल सांझी करनगे अपने मन की बात ते उस तो तुरंत बाद मानयोग प्रधानमंत्री जी दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर पेश कीता जावेगा ते पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण ऐसे ही दिन शामी 8 बजे प्रसारित कीता जावेगा।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
3: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੰਗੇ ਗਜ਼ਲ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗਜ਼ਲ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ।

दिल जलाने का हुनर सबको कहाँ आता है। दिल जलाने का हुनर सबको कहाँ आता है। कुछ लोग तो मुस्कुराकर ही राख कर जाते हैं। रेशमा दी आवाज़ दे विच गज़ल प्रोग्राम रंगे गज़ल दे तहत हुणे तुसीं सुन रहे सी। स्टूडियो दी घड़ी ते समां 8:18 ते 54 सैकेंड। पेशे प्रोग्राम दी अगली गज़ल गुलाम अली दी आवाज़ दे विच। शहर की भीड़ में हर चेहरा मुस्कुराता है, मगर हर दिल कोई दर्द छुपाता है। रोशनी तो है बहुत इन गलियों में, फिर भी इंसान तन्हा नजर आता है।

0: देश है सबका फेवरेट।
1: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: प्रोग्रामा संबंधी एक सूचना, मिती 28 जून दिन ऐतवार समा सवेरे 10 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम निक्के निक्के तारे दे तहत सरकारी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैनाल कलोनी बठिंडा दे विद्यार्थियों नाल गलबात। इन्हां नाल गलबात करनगे नितिश कुमार। सो सुनना ना भुलना, मिती 28 जून दिन ऐतवार समा सवेरे 10 बजे प्रोग्राम निक्के निक्के तारे।
3: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना, मिती 28 जून दिन ऐतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सचरी सवेर दौरान तुसी सुनोगे साड़ा हफ्तावारी सिलसिला पैगाम। प्रोग्राम पैगाम पेश करनगे विजय लक्ष्मी ते सतपाल बराड़। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा। प्रोग्राम पैगाम दे विच सुनेहे भेज सकते हो व्हाट्सएप नंबर 7173 73 146 दे। सो सुनना ना भुलना, मिती 28 जून दिन ऐतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सर्जरी सवेर दौरान हफ्तावारी सिलसिला पैगाम।
4: सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ हरजीत हरमा ते तुसी सुन रहे हो मालवी दी शान ते स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते।
5: प्रोग्राम चल रहा है रंगे गजल, आओ हुण सुनदे हां पंकज उदास दी आवाज विच ए गजल। तू करीब है तो हर लम्हा खास लगता है, वरना ये दिल हर पल उदास लगता है।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार।
2: प्रोग्राम रंगी गजल 8:33 खूबसूरत जियां गजला दे नाल नाल कुछ दिल दियां गल्लां अल्फाज ते एहसास गजलां हमेशा ही साढ़े नाल करदे ने। कहिंदे पहला खत था पहला एहसास था पहला खत था पहला एहसास था हर लफ्ज में बस तेरा ही नाम था। आज भी संभाल कर रखा है उसे क्योंकि वही मेरी पहली मोहब्बत का आगाज था।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित

0: दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much.

0: such today.
1: The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
2: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
2: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक

0: वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust

0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: केवल कुमार के और संगीत अर्जुन हरजाई का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था, जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकल

0: बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म ओके जानू से। आवाज ए आर रहमान, श्रीनिधि वेंकटेश की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

क्यों तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस डी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एस डी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक

क्रिकेटर बनना? ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं। बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आर डी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आर डी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आर डी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एस डी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

यही वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो

प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो। हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना तेरे हाथ

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने ये गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने

की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलचन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलचन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बाबरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

ठीक इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी, मेरे माथे पे तेरा प्यार दमकता है अभी। ये चांद भी मेरी तरह तन्हा है बहुत ज्यादा, एक से मुसाफिर हैं एक सा मुकद्दर है। मैं जमीन पर तन्हा और वो आसमान में, आज रात के दश्त में।

फूल खिले हैं भूली बिसरी यादों के, सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा, सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा, उफ चिराग पे।

मैं तो हर रात यही सोच के सोता हूँ, कल सुबह शायद तेरे दीदार का सूरज निकले। हर रोज तेरे ख्वाब लिए आंखों में दर बदर घूमता फिरूं मैं। एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। इश्क किसी को बताना नहीं पड़ता, आंखें खुद ही सब कुछ कह देती हैं। ये प्यार जो है तुझसे मेरा, किसी किताब में नहीं लिखा गया। तेरी आंखों में डूबा तो जाना कि मोहब्बत क्या होती है। बोझल हैं आंखें मगर नींद नहीं आती, वो तेरी सांसों की गुलाबी खुशबू। दिल भी खाली खाली है बहुत, तू मेरी रूह का हिस्सा।

जब पहले पहल तुझे देखा था, दिल कितनी जोर से धड़का था। वो लहर न फिर दिल में जागी, वो वक्त न लौट के फिर आया। सब्ज मध्यम रोशनी में सुर्ख आंचल की धनक, सर्द कमरे में मचलती गर्म सांसों की महक, रेशमी बाहों में चूड़ी की मध्यम खनक, शर्म की लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात, दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा। उधर धूप डल रही थी, इधर दिल डूबता जा रहा था। हाँ, आज तलक याद है वो शामिल जुदाई मुझको।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। साथियों, शायरी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें जाहिराना तौर पर रंग बिरंगे फूल हैं। ये दिल बहलाने का एक तरीका है साहब, जिसे हम पा नहीं सकते, उसे अल्फाजों में जी लेते हैं। वो उसका नर्म मुलायम लहजा, जैसे ढलती सांझ की लाली नर्म कोमल सुरों में कोई प्यार की बात कहने चली हो। उसकी हंसी की रिमझिम कि जैसे फजा में नीली, बहुत हल्की नीली सी चमकदार बूंदों के घुंघरू छनकने लगे हों, कि फिर उसकी आवाज की छुअन से हवाओं के हाथों में अनदेखे कंगन खनकने लगे हों। वही लहजा जब भी मुझे छेड़े है, यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, तो ऐसा लगे जैसे सावन की चंचल हवा सब्ज पत्तों के झांझन पहन सुर्ख फूलों की पायल बजाती हुई मेरे रुखसार को गाहे गाहे शरारे से छूने लगे।
1: तड़प ये दिन रात थी कसक ये।

मुझे बेपनाह शिद्दत से चाहने वाले, तुम्हारी चाहत विसाल की आखिरी हदों तक फकत मेरे नाम होगी। मुझे यकीन है वो पल वो लम्हा कि मेरे बालों पे, आंखों पे, पलकों पे, होठों पे, माथे पे, रुखसार पर फूल ही फूल होंगे। मेरा चेहरा तुम्हारी नज्मों, तुम्हारे गीतों की चिलमनों से उभर रहा होगा। तुम्हारी आंखों में छुपे समुंदरों में डूब जाएंगी मेरी आंखें। इतना तो किसी ने तुम्हें चाहा भी ना होगा जितना मैंने सिर्फ सोचा है तुम्हें। सच वो चांद है इश्क, जो दिखता सबको है मगर उसे पाना हर किसी के बस का काम नहीं।

0: देखते देखते तारों का सफर भी खत्म हो गया, चांद भी सो गया, मगर नींद न आई मुझको। कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, मिट गया ख्वाब आंख मलते ही। वो कौन है उससे तुम्हें वाकिफ भी नहीं हूं, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। हमें चाहिए था मिलना किसी अहदे मेहरबान में, किसी ख्वाब के यकीन में, किसी और आसमान पर, किसी और सरजमीन में।
1: फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लूं।

साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती, आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।